जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हौ पाई रहाओ। सब तेरी तू सब नित आया जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा।

ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पाते साही दसवे कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दोस्त सब तुम का वह आप हाथ द मोहे बचाव सुखी बसै मोर परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर द करिय सब बैरन कौ आज संगरिय पूरन होए हमारी आसा तो

नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेवगुन सुख दियो, सत्रन को पलमो बध कियो। घट घट के अंतर की जानता, भले बुरे की पीर पछानता। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जाबा करख करत हो कब हो, तुम मैं मिलता देह तर सब हो। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही तेरा

महामूढ़ कछ भेद ना जानत। महादेव को कहत सदा सेवा, निरंकार का चिन्त नह पेवा। आप अपनी बुद्ध है जीती, बरनत पहना पहन तो तेते। तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, ओत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट पयो संक्रिय कैठा। सिगरे श्रेष्ठ दिखाए अचम भाव, आ जुगाद स्वरूप स्वयं भाव। अब रक्षा मेरे तुम करो, सिख बार सिख संगरो। दोस्त जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेच करो रण काता। जे अस तोज तब सरनी परे, तिनके दोष्ट दुखत होए मरे। पुरख जाबना पग परे ते हारे, तिनके तोम संकट सब टारे। जो कल को एक

अनेक कह मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री सपान

दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरस

ओहकार सतगुर प्रसाद गहरी करक नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए मार कंडे ते को अधिकाई जिन त्रिण धार मूड बलाए गहरे करक नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए मार कंडे ते को अधिकाई जिन त्रिण

तिस गुर को शाबाश है जिन हर सो जी पाई, जिन हर सो जी पाई तिस गुर को शाबाश है।

0: पर हो एक की सरना, कहत कबीरा सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, पर हो एक की सरना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय घर कीर्ता खिय करते का होए बिचार, हो तत घर गावहो सोहिला। सिवरे हो सृजन हारो तुम गावहो, मेरे निर्भउ का सोहिला। हो वारी जित सोहिला सदा सुख होए राव, नित नित जीअड़े संभालियन, देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावहु तेल, देहु सज्जन असी सड़िया, जो होवै साहिब स्यो मेल। कार कारे हो पहुचा सदड़ै नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला, शे कर शे गुर शे उपदेश, गोर गुर एको वे सनेक। बाबा जय कर करते कीर्त होए, सो कर राख वड़ाई तोए रहाओ। बिस्वे चस्या घड़िया पहरा, थिति वारी महोवा। सूरज को रुत अनेक, नानक करते के ते वेस। राग तनासरी महला पहला, गगन में था रब चंद दीप, मने तारिका मंडल जंत मोती, धूप मलान लू पवन चवरो करै। सगल बन राए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ, सहस तब नैन नन नैन है तो कौ, सहस मूर्त नना एक तो ही। सहस पद बिमल नान एक पद गंद, बिन सहस तव गंद चलत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए, तिस द चानन सब मैं चानन होए। गोर साखी जोत प्रगट होए, जोत तिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद, लोभित मनवन दिन मोहिया ही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंको, हुए जाते तेरा नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बो भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडाहे। कर साधु अंजलि पुन वड्डाहे, कर डंडाओ पुन वड्डाहे रहाओ। साकत हर रसाद न जानिया, तेने अंतर होमे कंडाहे। ज्यों ज्यों चलहै चुभै दुख पावै, जमकाल सहे सिरंडाहे। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन मरन पव खंडाहे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर,
1: बसो खंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा है, जान नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत हल की बेला इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला।

रहाओ। एह संसार बिकार संसे में तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियावे हो रस अकथ कथा तिन जानी। जा कौ आए सोई बिहाजो हर गुरते मन है बसेरा निज घर महल पावहु सुख सहजे बहुर ना हुए गुफेरा।

सब गुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा सेव प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखहु सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखहु सरनाई। सुखहु टल गुर सेवियै, अहनस सहज दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख होवै सुख तख सामने, नूर अरसह पुरसह तुद रिठे सचे। मल जन्म जन्म दी कटियै, सजना सचा सिर साहाल। जिस पास बैठिया सोहिय, सबना दावे सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा। गुरपूरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय महदीनों। जन्म जन्म की मैल गई।

दुष्ट बहराई गुर पूरे का जपया जाप कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही ताकि शरण पर्यो नानक दास जाते ऊपर को नाही सिमर सिमर।

देह। गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरह दूर, कथना कथी न जावै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोटा। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै विप्रवाहो, साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाव अपार। आखै मंगै देहे देहे, दात करे दातार, फिर के अगै रखियै जित दिसै दरबार, मुहाके बोलण बोलियै जसुण धरे प्यार। अमृत बेड़ा सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार, नानके वै जाणियै सब आपिस चार। थापिया न जाए की तन होय आपे आप, निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाव्या गुण निधान। गाविया सुनिया मन रखिया भाव, दुख पर हर सो कर लै जाए, गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहया समाई, गुर ईसर गुर गोरख बरमा गुर पार्वती माई, जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई, गुरा एक देह बजाई, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर जाई, तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन भाणे के नाए करी। जेती सिरठ उपाई वेखा बिन करमा के मिलै लई, मत विचरत नजवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे यार जा होर दसुणी होए, नवा खंडा विच जाणियै नाल चलै सब कोए, चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर न आवई ता वात न पुछै के, कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोय न सुजई जे तिस गुण कोय करे, सुणै सिद्ध पीर सुरनाथ सुणै धरत धवले आकाश, सुणै दीप लो पाताल सुणै पोहिन सकै काल, नानक भगता सदा विगास सुणै दुख पाप का नासा। सुनै ईसर बरमाइंद सुनै मुख साला हनुमंद, सुनै जोग जोगत तन

मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सुबात नहीं चक चार लवैया साहेब श्री सब को सिर नायक जाचिक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बह पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे।

साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्ण सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस हैं पागते नर फेर न देह तरेंगे। कहा भयो जदो लोचन मूंद कै बैठ रहो बख ध्यान लगायो। नात फिरयो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो। भास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बै सो बितायो। साच कहा सुन ले हो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू ल पाहन पूज धरयो सिर काहू ल लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर वच दिशा मह काहू पछाह को शीस निवायो। को बुतान को पूजत है पास को मृतान को

0: सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुड़े सची बाणी शांत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बैनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहूं नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ ना जाने मेरा अरदास एको अंकार। श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय।

सचेत है कै चेतना को चार कियो। कतहु अचिंत होय कै सोवते अचेत हो। कतहु भिखारी होय कै मांगत फिरत भीख। कहु महादान होय कै मांग्यो तहन देत हो। कहु महाराज ने को दीन दीजते अनंत दार। कहु महाराज ने ते छीन छेत लेत हो। कहु वेद रीत कहु तास विपरीत। कहु त्रिगुण अतीत कहु सुरगुण सुमेत हो। तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर

जनम मरण दुख जाय होवै सिफत खसामदी नूर अर सहो कर सहो चटियै तुद रिठे सजे पातशाह मल।

सिमरौ सिमर सुख पाया, चरण कमर रख मन माही, ताकी शरण पर्यो नानक दास, जाते ऊपर को नाही। सिमरौ सिमरौ सिमर सुख पाया, चरण

0: राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोइना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े न्यो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचा दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यों कूड़ डोबे पू नानक बखाने बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़ मल्ला पहला
1: सचता प्रजानिए जरदे सच्चा हो कूड़ की मलुतरे तन करे गच्छा तोय सच ता प्रजानिए जा सच तेरे प्यार नाउ सुन मन रसिए ता पाए मुख द्वार सच ता प्रजानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साधके बिच दे करता बियो सच ता प्रजानिए जा सिख सचीले दया जाने जी की किछ पुन दान करे

अचल अविनाशी, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस मृत दुर्मत मल नासी, सतगुर चरण कमल हित धारण, गुर अर्जन गुण सहज विचारन, गुरु रामदास का

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज अपने इस पावन पवित्र श्लोक दे विच आख रहे हैं, जो शायद साडे कदी ख्याल च भी ना दे गुरु बाबा जी साडे जीवन नू जिस तरह असी जींदे हां, अपने वालों तो असी सही ही जींदे, पर गुरु बाबा जी दी ऑब्जर्वेशन साडे जीवन दे प्रति यह है कि जीवन की विधना है। अगर आप जी इस पंक्ति नू नोट कर लो तो लिख के ते हर वेले सामने रखो ताकि ए सानू रिमाइंड करांदी रहे कि बेशक असी ग्रो हो गए हाँ फिजिकली, बेशक असी इंटेलेक्चुअली भी ग्रो हो गए हाँ, बेशक असी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हाँ, बेशक असी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी दे युग दे विच जी रहे हां, पर गुरु बाबा जी दी निगाह दे विच, गुरु बाबा जी दे ख्यालां दे विच आले सानू जीना ही नहीं आता, तो कितनी बड़ी गल है। और इसनू जो ध्यान दे नाल सुनेगा उस दे अंदर ए विचार ए लाइन एक तूफान उठा देगी, एक टर्मोइल ले आएगी, एक सोच विच इंसान नू जरूर पाएगी कि सच मैनू जीना नहीं आता, कि मैनू जीना ही नहीं आता, जे मैनू जीना ही नहीं आता फिर मैनू आंदा की। फिर इसका अर्थ यह होया कि जब गुरु बाबा जी आखते हैं कि जीवन की विध ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती, जीना ही नहीं आता, जीवन की कला ही नहीं आती, आर्ट ऑफ लिविंग जो है वही नहीं आता, तो फिर की मेरा बाकी सारा कुछ जो कुछ मैं करता हां वो गलत नहीं होएगा। फंडामेंटल चीज जो है कि जीवन की विधि नहीं आती, जीवन की विधि नहीं है, तो फिर तो मेरा सब कुछ ही जो मैं सोचता हां सही करता हां वो गलत हो गया, अपने आप ही गलत हो गया। पर ईमानदारी के नाल प्लीज ट्राई टू रिफ्लेक्ट विद इन एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि कितनी दफा असी अपने आप नू एक कदे वंडर

आप जी याद होएगा जिस पंक्ति उत्ते कल दास ने कीर्तन छोड़िया सी, आप जी बेनती की सी इस पंक्ति नु अपने नाल लेके जाओ। वो केड़ी सी? गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी आखते हैं कि मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। हुण जिसनु जीवन जीना आंदा है उससे भी ही जीवन दी यात्रा सफल हो सकती है। जिसनु जीवन ही नहीं जीना आंदा वो कित्थे पहुंचेगा? वो कित्थे भी नहीं पहुंचेगा। तो जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा के दौरान असी जो कुछ भी करते हैं वो असी गलत करते हैं, क्योंकि सानू जीवन की विधि नहीं आती। जीवन की विधना है, असी सोचते हाँ असी सक्सेसफुल हो गए, असी कामयाब, पर सक्सेस के उत्ते जो गुरु महाराज जी का अपना विचार है, जो गुरबाणी की रोशनी है, असी बीइंग ए सिख सक्सेस नू गुरु बाबा जी चो ही समझना है ना, कि गुरु साहब सक्सेस किसनू आखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक देव जी महाराज की निगाह च सक्सेसफुल कौन है, सक्सेस की है? वो है कि जीवन की यात्रा सफल हो जाए, जीवन जिस मंजिल ते पहुंचना चाहिए है उथे पहुंच जाए। बाबा जी सक्सेस के उत्ते शब्द उचारते हैं, कहते हैं

प्यारी गल आ समझण वाली। स्त्री पुरख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ किमें पूरे होते हैं, मैनू सुख इस तो किमें मिलता है, ये नहीं कि इसनू मेरे तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख किमें मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हां, वट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदिया हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरिया नहीं होंदिया तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें कट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आया, इत्थे भी समझे नहीं कि यह रिश्ता आत्मक सफर तय करने के वास्ते दो आत्मक पंध ही को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिहड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते दोने आपो अपनी मंजिल ते पहुंचते, एक दूसरे नू दोने जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी ते पहुंचने के वास्ते, पर दोने जाने एक दूसरे नू यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन पर्सनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो पर्सनल नीड्स जब पूरी नहीं होंगे तो कहते बेशक भावें आवो तो भावें जाओ, जब मर्जी चले जाओ, यू कैन लीव मी एनी टाइम एंड इट हैज बिकम सो ईजी एंड वेरी सिंपल थिंग नाउ डेज। कहते तो जीना ही नहीं है।